0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ना, ऐसे नहीं बताऊंगा। तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दूं, बस समझ जाओ।